0: duel.
1: अनसुने स्वर से किसी के कर उठ जय जयकार, कर उठे जय जयकार।
2: न जाने आज क्यों जी चाहता है स्वर मिलाकर अनसुने स्वर में किसी के, मैंने किसी का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मन में भावना उमड़ रही है कि कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है, उसकी आवाज में आवाज।